0: तही प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर दिखे पौलयो। तन तन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साह जिहड़ा अंबाले के नज़दीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि ये लहदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साह बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तो आपां सारे करदे हां, पर बंदगी एहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। जदों इहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साह कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोग यात्रा करया करदे सन। तुर पए, तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई वी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना किया। कहे, मैं सारे ए अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे, ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकड़ पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने, दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार। साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावें अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे, दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो। साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा, गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने
1: आख

लेख लेख धर्म विचारे गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंदर इंदर आसन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बीचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पायाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद मा

रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै

कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना उह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चुकै भोग। गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को होआ ना को होए।

शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर

अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घाट घाट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी।

एक पढ़ है बहु सिमरत शाश्वत जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई, तू जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी, तू नेह चल करता सोई, तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे

के जी जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंडा साई, जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखा है जान है सोए, जन नानक गुरमुख परगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ै पई ले निवासा, पानी पाव को तिन है किया। पंकज मोह

हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, सेवकन को सैव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पशानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निरलंभ, आद

है पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उतपुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट पयो संक्र इकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए।

सतसंगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तम

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां।

पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे उथै तेरी राख अग्नि उदर माहे सुनकै जम के दूत नाए तेरै छड़ जाहे भउ जल बिखम असगा।

0: सत्संग जी
1: बोलो जी।
0: वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेबास गोरी पाचे दस प्रथम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई ते आए फिर अंकर कुरते अमरदास रामदास फिर सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय ते सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कानून दयावैताय सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब ताई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्र आत्मिक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदर का तैंतर के घर से बोलो जी। वाहेगुरु गरीब महाराज आप जी के पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त अठिया जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छकिया दे चलाई ते भाई देख निटकी तना प्यार सत्यारे ने कमाई दते अंदर की बोलो जी। वाहेगुरु जिन्ना सिंघा सिंघनिया धर्म ये सी दिते बांधवा कटवाए कोपरिया लुआईया चरखिया चढ़े आ रहे चलाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा से किसी तरीके सत्संग निभाया तिना की कमाई दते अंदर की बोलो जी। वाहेगुरु पंजा तख्तां सतल गुरुद्वारे दते अंदर की बोलो जी। वाहेगुरु प्रथम है श्रीमत खालसा जी की अरदास है जी श्रीमत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम कीर्तन है चित आवण का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा साहब दर चरियायत देव ते की फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। वाहेगुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहेगुरु सिखा का मन नीवा मत उची मत पत के रखे आप वाहेगुरु गुरु गरीब नवाज पंथ सदा सहाय दार जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्होंने आपके पंथ में छोड़ा गया है उन्होंने देखो दर्शन जा रहे सेवा संभाल दा अपने खालसा जी ने बख्शो ये रोटियां की ओट गुरु रियासरिया के अस्ते गुरु धन धन गुरु ने तार दियो आपके चन कावा दरदास जी आपने बख्शिश की आप चैन पितृ रुमानी सुखमणी साहब के संपूर्ण पाठ ने कहा ऐस वे संध्या समा जान के आपके चैनल सोरदार रह रहा सत पाठ की कृपा करो होइयां भुलन चुकां दी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतां हिरदे दी कृपालता करो जी अगो तो शोध ते पितृ बाणी उचारनी बल बुद्धि बख्शिश करो महाराज इस खुशी में आप दिया बख्शिया दाता पितर क्राफ शाह के अंतकार करके हाथ उतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद शाह संगत रचना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पुत्र नाम जप बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी ईवी महाराज कृपा करो आप जी बख्शी दाता जो नगर तुट सेवा प्रमाण करनी अद चरना सेवा करने सारे प्यारी सिंगा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चंडकर बख्शो सदा ही इसे तरह अपने चरना सेवा की भावना बातता करो गरीब रवाज कृपा करो जी इतार जी बख्शिश करो अमृत वेद तो लैके दरते आई सब संकतों की हाल जी दर प्रवान करो घड़ियां लेके लाओ संकतों दरते तिर फुर भेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी धन धन गुरु ग्रंथ का धार पिता जी आपके चरण कमल के दास जी तार आपने बख्शिश की है आपने सेव कर उदो बख्शी शाह बख्शी खुशियां बख्शी तार जी किताब दर कर सकता भाई किरणपाल सिंह बीबी अंजू कौर राणी अच्छे परिवार को धार पिता जी परिवार की शुभकामना वास्ते अपना पूरी करने वास्ते अदे काका जसवीर सिंह के जन्मदिन की खुशी में आपके चरण का धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा कर देता है परिवार को अज के शामा के लंगर देगों की तन मन धन सेवा कर रहे परिवार पातशाह जी बख्शिश करते गरीब महाराज आप मेर पैसे तरह को परिवार ज्यादा बख्शो अपने सेवकों के सारे कार्य निर्घनता से पूर्ण करो शो से पितृ सेवा लैंने की माता करें तार मेर करो सच्चे पातशाह जी परिवार दारिया शुभकामना पूरी करनी दादियों की राजपाल रखा ज्यादा बख्शो जी गरीब महाराज कृपा करते हैं काका जसमीत सिंह तंदुरुस्ती बख्शो बच्चे लंबी आयु बख्शो माता पिता धर्मदेश कौन का आग्ञाकार बच्चा दार बच्चे गुरसिखी दाल बख्शिश करके उच्ची विद्या दाल बख्शो सेवकों के सारे परिवार में तंदुरुस्ती सुरक्षा की चढ़ कलाकारी दाते राजपाल रख कमाइया श्रवण करो जी गुरु महाराज आप अंग संघ सहायता बख्शो दार मेरे बोलिया सबके जान रखे सागे दरदार गरीब महाराज आप सेव सेव करते अपने सारे कार्य आप राज करने की बात करो दरदार जी चांदन ग्रंथ दार पिता जी आप चरण कमल दरदास जी आप दर कर सकता स्वर्गवासी सरदार सुखजीत सिंह बाजवा जी ਪੰਜੀ ਬਰਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾਰ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤ ਮਾਲਕ ਰਿਸ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਸ਼ਕਰ ਦਤਾਰ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸਮਾਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਦਤਾਰ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁਲੰਦ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤਾਰ ਦੇ ਤਾਰ ਉਹਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਾਨਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਠੰਡ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਆਵਾਗੁੰਦ ਬਚਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਰੱਖੋ, ਦੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਧਿਆਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਚਾਜੀ ਕਰਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਆਈਏ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਚਾਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਣ ਮੰਦੀ ਵਾਲ ਦਾ ਕਰੋ ਜੀ ਵਿਰਵਾਦ ਸੇਵ ਕੌਮ ਖਾਲਸਾ ਬੰਦ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਵਾਗ ਪਿਆਜ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿ ਦਾਜ ਬਖਸ਼ੋ, ਚਰਨਾਂ ਜੋੜੋ ਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਜਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ ਪਾਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਨਵਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕਾਰਨ ਬੈਠੀ ਲਾਈਵ ਕਿਤਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਘੜੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸਭ ਕਰੋ, ਘਰ ਜਵਾਦ ਦੇ ਵਕਤ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਰ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆਓ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਤਰ ਗੁਰਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਵੜਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਥਾ ਜੀ ਬਾਲੇ ਹਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਗੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੁਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਖੰਡਾ ਜਾ।

पाए पौड़ी। एक वन खंड बैस है जाए साधना देवही, एक पाला ककर पन शीतल जल हे वही, एक भस्म चढ़ा

पार जे सतगुर सेवही। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दातार जी दी अमृत हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी, आप तनता योग हो जो संध्या दे दीवान दी हाजरी पर रहे हो। सतगुरां दी कृपा बख्शिश दे सदका अज दे शामां दे दीवान भाई साहिब भाई किरणपाल सिंह जी उन्हां दे परिवार वल्लों अपने बच्चे दे जन्मदिन दी खुशी अंदर सतगुरां दा शुकराना करदे आं उलीके गए हन। नीता प्रति आप जी जो सतगुरां दी अमृत बाणी दी कथा सरवण करदे हो उस लड़ी नूं अग्गे तोरदे आं अज 15वीं पौड़ी अते उस दे नाल दो शलोक आप जी ने सरवण कीते हन। शलोक तीसरे गुरदेव जी दे हन, पौड़ी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी है। आपां इस दी विचार करांगे। प्यार सहित आप जीआं ने अमृत बाणी दा कीर्तन भाई साहिब भाई प्रतपाल सिंह जी रसीला तिन्ना तो सरवण कीता है। वो कीर्तन दे विच बच्चे नूं असीस रूप विच शब्द पढ़ के गए हन। पूता माता की आसीस, निमक ना बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह विच इह सच्ची ते सुची ते सदीवी असीस है जो सतगुरु दतार पिता महाराज ने सानू प्रदान कीती है कि जदों भी किसे तो असी असीस लईए जां किसे नू असीस दईए तां इही इच्छा रखिए कि सानू एहो जी असीस ही देनी चाहीदी है जां लैनी चाहीदी है जिदे विच परमेश्वर दे नाम नू चित आवण दी गल होवे। सो गुरु साहिब कृपा करे आपां पावन बाणी दे शब्दां नू वाचांगे। आप समूह संगत दा धन्नवाद प्यार सहित जुड़ बैठे हो। विचारां दी आरंभता तो पहला रसना नू पवित्र करदिआं उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। फिर कृपा करो उचारण

आओ पत्ते दी सांझी पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किरण पाल दे परिवार नू बहुत बहुत बधाइयां। आओ एक शब्द दी हाजरी है, अपनी सेवक को कभू ना बिसारो।

गुरु की प्यारे साध संगत जी, कीर्तन करदे आ, बाणी पढ़दे आ, अनेक प्रकार दियां गलतियां होईयां जी। गुरु ते गुरु दी साध संगत बख्शण हार आ जी, बख्श लैणा जी। आ हुण आप जी नूं भाई साहब भाई लाखन सिंह जी कीर्तन द्वारा निहाल करनगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।

वड भाग्य कोटि कोट धनबाद शायद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का अज दे दीवाना दे अंदर भाई किरण पाल सिंह जी तिना दे सपुत्र बेटे का जसनीत सिंह का जन्म दिहाड़ा मनाने की खुशियां नूं मुक रखदे आं। मालक दी बाणी दे नाल जुड़ रहे हां। आओ गुरमुख परिवार नूं बहुत बहुत वधाई। आओ एक शब्द दी हाजरी, आओ मिलके सारे ही गायन करिए।

भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तुमते हो सो आज्ञाकारी तुमरी कत मित तुम्ही नानक दास सदा कुर्बानी। पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी के पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर दे अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस जिठे सब्द हो जाए तेग बहादुर सिमरिया। घर नौन त्यावे धाए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान रखे। बोलो जी पंजा प्यारिया चौह साहबजादिया चाली मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्हों नाम जपया वंड के छकिया देख चलाए तेग वाही देख कैंडिट किया तिना प्यारिया सचियारियों की कमाई का ध्यान रखे। खालसा जी साहब बोलो जी। जिन्हों सिंगा सिंघणिया ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया चढ़े आ रहा चराए गए गुरुद्वार की सेवा लिये कुर्बानियां कीतिया धर्म निहारिया सिखी के सस्वस सिंह निभाई तिना की कमाई का ध्यान रखे। खालसा जी साहब बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वार का ध्यान रखे। बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी। साहिब तहत हर शरिया देखते फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी साए खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहे दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशना चौंकियां झंडे बंगे जुग हो जुग अटल धर्म कह जयकार। बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उचे मत पत कर रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरुधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। फेर माण्यो के मान नितान्यो के तान उटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी के चरणा च अरदास बेनती महाराज जी आप जी की महान बख्शिश हुई पावन हजूरी अंदर रात्रि के दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना आप दी शब्द कीर्तन चल रही लड़ीवार गुर शब्द दिया विचारा उपरंत अमृत बाणी के शब्द कीर्तन हुए महाराज जीओ समुची सेवा निभाद्या बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या विचारा करद्या आप जी की सेवा संभाल करद्या होइयां बेअंत पुला बख्श देनिया जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उदम बख्शिश करना जी बाणी दा पाव आईयां संगतां दे हिरदिया ते वसाउणा आईयां संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दीआं तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनिया सभना नूं दरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रख्या बख्शिश करनी महाराज जी बेअंत संगतां दूर दुराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रही हैं जाप सरवण करदे आप जी का धन्यवाद करदे बेअंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा संघा वास्ते ऑनलाइन भेटा की महाराज जी सारी संगत की हाजरी दर प्रवान करनी सपना की माया सफली करनी किरत कमाइया विच बरकता पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनियां चढ़ती कला बख्शिश करनी महाराज जी आप जी के दर घर के सेवक भाई किरणपाल सिंह जी समूह परिवार वालों मिलकर बेटा जसनीत सिंह के जन्मदिन की खुशी में महाराज जी अज शामा दे दीवाना की सेवा की गुरु के लंगर की सेवा की कृपा करनी महाराज जी सेवक परिवार की सेवा थाए पाने शुभ भावनावां संपूर्ण करनिया बेटा जसनीत सिंह के सिर से मेहर प्रयात रखना लंबी आयु विद्या दे दान अमृत दियां दातां बख्श के निहाल करना तरो करो नामदान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना कृपा करनी महाराज जी जिसका कार्य इतनी ही किया मानस क्या विचारा दे महावाक अनुसार सेवकां दे रहिंदे कार्य अंग संगों के सहायता करनी सफलता की दात बख्शिश करनी महाराज जी चढ़दी कला बख्शिश करनी घर विच परिवार विच सुख शांति की दात बख्शिश करनी जी
ਦਰਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਸਤ ਬੀਜ ਚਾਹਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 31 ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ $1,000 ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੁਨਿਕਰ ਫਲਾਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ $101 ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਪਲਵੀ ਹਿਸੇਰੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਹਿਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਸੁਣਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਰਾਹ ਪੈੜੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਅਕਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ।

ही रहना ख्वार हुए सब लेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े से उतरे जोश

मुक्ते जो बोले यहां वहां सच होवे। तनासरी महला चौथा इच्छा पूरख सर्व सुखदाता हर जाके वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना इच्छा पूरख सर्व सुखदाता हर जा कै वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना।

हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना। रहाओ जय हर सिमरन पया, तह उताद जत की नी, वड पागी हर जपना, जन नानक को गुर एहमत दीनी। जप हर पव जल तरना, जह हर सिमरन पया, तह उपात गत कीनी, वट पागी हर जपना, जन नानक को गुर एहमत दीनी। जप हर पव जल तरना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कीर्तन सुहला, सुहला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सत गुर प्रसाद, जय कर कीर्ता किए करते का होए विचारो। तित कर गावो सुहला सिवरो सजनहारो, तुम गावो मेरे निरभाओ का सुहला। हौ वारी जित सुहेले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जेड़े समालन देखेगा देवनहार, तेरे दाने की मतना पवै ते सदाते कमण सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सजन असी सुनिया जो हो वै साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदरे नित पवन, सदनहारा सुमरी है नानक से दे अवन रागा सा महला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वे सनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोय रहाओ। विस्वे कसियां कणियां पैरा, किथी वारी माँ हो होवा, सूरज को रुतन एक। नानक करते के केते वे सराग कनासी महला पहला। गगन मैं थाल रब चंद दीपक, बने तारका मंडल जनक मोती। धूपने आण लो पवन चवरो, करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोय को, सहस मूर्त ननायक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंधेव चलत मोही। सब मैं ज्योत ज्योत है सोए, तिसदे चानन सब मैं चानन होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, ज्योतिष भाव है सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, आंदनो मोए आए प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी मैला चौथा, काम क्रोध नगर भो भरिया। मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लेव मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। राहो साकत हर साधना जान्या, तिन अंतर हो मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चले चुबै दुख पावे, जमकाल सहसर डंडा है। अर्जन हर हर नाम सुमाणे, दुख जन्म मरण भौ खंडा है। अबनासी पुरख पाया, परमेश्वर भो सोभ खंड ब्रह्मंडा है।

हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड बड़ा है जन नानक नाम दार टेक है नामे ही सुखमंडा है राग गौड़ी पूर्वी मैला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत कहल की बेला यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद गटे दिन सरह नारे मन गुरमिल का सुवारे राहो तो संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पियावे और असकत कथा तिन जानी जाको आए सोई बेहाजो हर गुरते मने वसेरा निज कर महल पौ सुख सहजे बौरनाए गोफेरा अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे।

नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सुवावै न चीत जो बैराई ता सुप्रीत बलुआ के गृह भीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत काल नया वै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर करम तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मह सुख कनेरे कोई न जाने कुबरायत कोई न जाने तुमरायंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी।

सदा कुर्बानी सलोक दीन हार प्रभ छूट कै लग है आन सुआए नानक कहू न सी जई बिन नावे पत जाय अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावे एक वस्त कारण बिखूट गवावे एक भी ना दे दस भी हिरले तौ मूड़ा कहु कहा करे जिस ठाकुर स्यो नाही चारा ता कहु कीजै सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन उठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया।

अज्ञानी मन रूस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्त से आज्ञा राखे, प्रभु की आज्ञा मन मथे, उसते चौगुण करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक पात माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिर की छाया स्यों रंग लावे, ओ बिन सै मन पछतावे, जो दिसै सो

मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया, मिथ्या हों मैं ममता माया। मिथ्या राज जोगन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत विमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को गिर है। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद। मिथ्या चरण पर बेकार कौताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पर

साच बिना कहोवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावता कै दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोबिंद भजन बिन बृथे सब काम, ज्यो किरपन के निरार्थ दाम, धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख न काहू पीन। अवर उपदेसै आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै, जिसकै अंतर बसै निरंकार, किसकी सीख तरै संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता।

नानक जस कहे। जे प्रसाद सुनहे करन नाद, जे प्रसाद पिखह बिस्मात, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजी बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहु, गुरु प्रसाद नानक मन जागहु, जे प्रसाद तुम प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनहु बिसारु, जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ताको जाप, जे

शिवराज जी बरसा सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सुए आप जपाए जपै सुनाऊ आप गावाए सुहर गुण गाऊ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मातु तम हुए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपहु कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लगै हर नाथ नानक इनते कछु नहात श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी साध का संग मुखु जल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमानु साध के संग प्रगटे सुगयानु साध के संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब होत नवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहि समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब कीरेन साध के संग मनोहर बैनु साध के संग न कतहुं तावै साध संग स्थित मन पावै साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग

परमानंदा साधक संग नाही होता साधक संत जय सबे आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कब हुतावे साधक संग सदा सुख पावे साध संग दस्त गोचर लह साधु कै संग अजर सह साधु कै संग बसै थान उचे साधु कै संग महल पहुँचे साधु के संगड़ै सब धर्म साधु के संग केवल पार ब्रह्म साधु के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साधु के संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटम निष्ठार है साधु कै संग सो धन पावे जिस तन ते सब को बरसावै सात संग धर्म राय करि सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सब थान गम नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं हो काल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुखत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छे सोई फल पावै साध के संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म।

साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बन आई। नानक साध प्रभ भेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोए। नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंखो लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, ज्यो बसला को खुदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुणाओ, नानक जो पाव का सह सुभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास, जैसे तारु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसे

ब्रह्मज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्मज्ञानी एक संहिता, ब्रह्मज्ञानी कै हुए चिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्मज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्मज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी कौ सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाय अदाक्षर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी कौ सदा।

कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक पुर धारै जो अंतरना, सर्व मैं पिक है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानको पर सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पर सुमन मैं प्रीत निरंजन, दर्श पर त्रै रूप न पिक है, नेत्र साध की टहल संसंग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद भिख्या पर हरय, मन की वासना मन ते डरय, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा, पर सुबह सुनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वह नहीं कर्म, तिस बह सुनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग्राचै, मंथन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ वरह नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनस सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सासंग पापा मल खूवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तने अर्पै विष्ण परीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म शुद्ध है, राम नाम सारस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो ननाया वै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जानै अस्थूल, चहुवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहुवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सा सुन पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उरता है, पस प्रेत मुक्त पाथर को उतार है, सर्व रोग का उखद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहू जुगत के तय न पाइये धर्म, नानक जिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सतराम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाई तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर गए परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परे, सगल संगा समुदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, रब की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरक तैसा उसोग, सदानंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी भिख काटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजा, जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभावै सोई फुन होग, पसरे वाप अंत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भये निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जानंत न पारावार, नानक रचना प्रवरची बहुविध अनेक प्रकार, षष्ठपदी कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी,
कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपेश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते कांत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिगात्म निकोर, कई कोट पर दर्व को ही रह, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट पर देश परमाहे, जित जित लाभ हो तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिर जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस ताम सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अरशास्त्र, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट की चिर जीवे, कई कोट गिरि मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जतिन्र पिसाच, कई कोट भूत परे सुकर मिर्गाच, सब ते नेरै सब हुते दूर, नानक आप लिप्त रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीव मरै, कई कोट बोजोनी फिर है, कई कोट बैठत ही काहे, कई कोट कालै थक पाहे, कई कोट गिए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जय जय पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभु कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगतिन लिव लागी, कई कोट प्रभु को खोजनते, आत्मै पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिल्यो प्रभु विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हो आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट काणी अर कांड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हो अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्रभते हुए ब्रह्मा ही समाता, कांत न जाने कोय आपे आप, नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर भय सत सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सह समावै, अपने जन को साथ साथ समारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे, सलोक करण कारण प्रभे कहै, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारणै, जल थल महील सोय, अष्टपदी करण करावन करनै जोग, जो तिस भावै सोई हो, किन मैं थाप थापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे धार धर रहावै, हुक्मे पुजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच विहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मैं रहा समाई, प्रभावै मानुख गत पावै, प्रभावै तां पात्र तरावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखै, प्रभावै तां हर गुण भाखै, प्रभावै तां पत सुधारै, आप करै अपन विचारै, दोहां सिरियां काप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहु मानुख ते क्या होइ आवै, जो तिस भावै सोई करावै, इसकै हाथ होए ता सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे, अनजानत बिखिया मह रचै, जे जानते अपन आप बचै, भरमी भूला दह दिस धावै, निमक माय चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगते, नानक ते जन ना मिले, खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवास, जा का दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै, जा को अपनी करै बख्शीस, ताका लिखा न गने जगदीश, जीव पिन सब तिस की रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही सहात, कर्म करावन सर्व कुनात,
आज्ञाकारी बपुरा जियो जोत सुभावै सोई पुन थियो कबू ऊंच नीच मह बसै कबू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊबकास पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिला वनहार कबहू निर्त करै बहुपात कबहू सोए रह दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की होत रवाल कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू अपकीर्त मह आवै कबहू भला भला कहावै जो प्रवरा कहते वही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबहू होए पंडित करे राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू अपकीर्त मह आवै कबहू भला भला कहावै जो प्रवरा कहते वही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मोन धारी लावै ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनिक जोन भरमै भरमिया नाना रूप ज्यों सुहागी दिखावै ज्यों प्रभावै दिवै नचावै जो सुभावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कबहू साध संगत उपावै उस स्थान ते बहुर न आवै अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नामृति करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान सलोक सुखी बसै मस्कीनी आए आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती होत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होत बिष्टा का जंत आपस को करवंत कहावै जन्म मरै बहुजोन परमावै तन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानकी हां मुक्त आगै सुख पावै धनवंता होई कर गरबावै तिन समान का संग न जावै बहुलस्कर मानुखू पर करे आस फल पीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जानै बलवंत खिनमै होए जाए पसमंत किसे न बधै आप अहंकारी धर्म राय किस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगै परवान कोट कर्म करै हौं धारी श्रम पावै सगले बिरतारी अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरक फिर अवतार अनिक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर तर कह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसै भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ हुए तब इसको सुख ना ही कोई जब ए जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को वैरी मी तब लग नेचर ना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहज खटेला कोट तावै तृप्त नावै माया पाचै पावै भोग विकिया के करै न तृप्तावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं कोरा जय सुपन मनोरथ वृत्ति सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बटभागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करण हार किसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रभु सोए जो किच कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझै देखे करै विवेक अपहे कपहे अनेक मरै न बिनसै आवै न जाए नानक सद ही रहा समाए आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो अपन विस्तार सब कछु छुकाव करने हार उसते भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एक सोए अपने चलताव करने हार कौत करै रंग आपार मन मया मन अपने माहि नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किनै विख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किनै बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਬਖਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ

नाम सुखमनी सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विसरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहाले वकार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस्यण पा लख होहे तां इक न चलै नाल केव सचियारा होइयै केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेखो दुख सुख पाई इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाणै निसाण गावै को गुण वडियाइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लाए फिर देह गावै को जप दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आख है मंगा है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक इवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जेते सुपावा विण पाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता।

नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, सुनाए ईसर ब्रह्मा इंद, सुनाए मुख साला हनुमंद, सुनाए जोग जुगत तन भेद, सुनाए शास्त्र सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, सुनाए सात संतोख ज्ञान, सुनाए अठ सठ का इसनान, सुनाए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनाए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, सुनाए सारा गुणा के गाह, सुनाए सेख पीर पातशाह, सुनाए अंधे पावे राह, सुनाए हाथ होवे असगाह, नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछुताए, कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करण विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल पवन की सुध, मन्नै मोहे चोटा ना खाए, मन्नै जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पत स्यों प्रगट जाए, मन्नै मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै पावै मुख दुआर, मन्नै परवारै साधार, मन्नै तरै तारी गुर सिख, मन्नै नानक पवै ना भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान, पंचा सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कहे करे विचार, करते कहे करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तबलै उपर किता पार, धरती होर पर होर होर, तिस ते पार तलै कवण जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया वुड़ी कलाम, एहो लिखा लिख जाणै कोए, लिखा लिखिया किता होए, किता तान सवाले हो रूप केती, दात जाने कौन कूत, किता पसाओ एको कवाओ, किस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पाखो खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा।

अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जेव फुरमाए तेव तेव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार परिय हाथ पैर तन देख पानी धोता है उतर सुखे मूत पलीती कपड़ होए देसा बूण लइए ओह धोए परिय मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वैण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सोवेला वखत कवण कवण थित कवण वार कवण से रुति माह कवण जित हुआ आकार वेल ना पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वखत ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुराण थित वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सर ठीको साजे आपे जाने सोई किव करे आखा किव सा लाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपो जाणै अगै गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगासा आगास उड़क उड़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक तात लिखा होए ता लिखी है लिखै होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाही एती सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद न जानिए है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मन होना विसरै अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करण देन ना अंत अंत ना वेखण सुनण ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै परवार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए किते मंगह जोद अपार किते अगणत नहीं विचार किते खप तुट है वेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे कितिया दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जेतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आखै से भेके ई के जिसनु बखसे सिफत सला नानक पात साही पात साहो अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवै अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बखसीस अमुल निशान
अमूल करम अमूल फुरमान अमूलो अमूल आखिया न जाए आख आख रहे लिवलाए। आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करे वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख किते किते बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नर मुन जन सेव किते आख आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे किते किते होर करे ता आख ना सकह के जे वड भावै ते वड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गवारा गवार सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वावण हारे किते राग परी स्यों कहियन किते गावण हारे गावै तुहन पाउण पाणी बैसंत्र गावै राजा धर्म दुआरे गावै चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावै ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावै इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा माश पायाले गावन रतन उपाए तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावह जोद महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पात झोली ध्यान की करै बेपूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साद संजोग विजोग दोए कार चलावै लिखे आवै भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव ते सुभावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै ऊना नदर ना आवै बहुता इहो विडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी भौ लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश एतराहे पत पवड़ियां चढ़िए होए कीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस
नानक नदरी पाई कूड़ी कूड़ ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राज माल मनसूर। जोर ना सुरते ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिति वार, पवन पाणी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पाणी वैसंतर, केते कान महेश। केते बरमे घाड़त घड़िया रूप रंग के वेस। केते अकर्म भूमि मेर, केते केते धूप देस। केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देस। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेस। केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात निरिंद। केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकिया गल्ला कथिया न जाहे, जे को कह पिछे पशुताए। तिथै घड़िया सूरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन मैं राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे। ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो, करै आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर विखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर पंड, जे को कथै ता अंत ना अंत। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार। विखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा धीरज सुनियार, आहरण मत वेद हथियार। पाओ खला अगन तपताओ, भांडा पाओ अमृत तित टाल। घड़िए शब्द सची टकसाल, जिन कौ नदर कर्म तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत दिवस रात दोए। दाई दाया खिलै सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर। करमी आपो आपणी कि नेड़ै के दूर। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं, छपाए छंद तवा प्रसाद। चक्र चिहन अर बरन, जात अर पात नहन जेहे। रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे। अचल मूरत अनुभव प्रकाश, अमितोज तिहि जय। कोट इंद्र इंद्राण साहु साहान गणि जय।
त्रिपवन महीप सुर नर आसुर नेत नेत बन तृण कहत त्वा सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अशेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सो एक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरखाते नमस्तंग निरतूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग तिरमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग तिरभ्रगे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रपोगे नमस्तंग सजोगे नमस्तंग आरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग आगमे नमस्तस्तरमे नमस्तंग जलाशरे नमस्तंग निराशरे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसंग अदेसे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग निरपामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व कूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्त सदैव नमस्तंग अपेव नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्त दयाले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो सत अबंदे नमस्तंग नृसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सोहाके नमो सर्वशोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाटी छंद त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अभीत है त्रिमान है निधान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अपर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है नृसृत है निर्लंब है असंभ है आगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपरम है अजीत है अभीत है अबाह है आगाह है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है पुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ती ने धाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पहुणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ती बेभूते कलंकं बेना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जुगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम वृदे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमे अभोगी अपुगते नमो जोग जुगवेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पुहुप पुहुपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इष्टनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी
सदा सिद्ध धा बुद्ध धा बिरद करता अदो उर्द अर्धं अगं ओग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अपहिदी अनामं अकामं समस्त पराजी समस्तास्ततामं तेरा जूर चाचरी शंद जले हैं थले हैं पीत हैं अपहे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे अनदि स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवंग निर्नाथे नमस्तवंग प्रमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृशं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिदं निवासी चरपट छंद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल शंद त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल यत्र तत्र विराज ही आवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानहि जिह भेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बक्कर फिर चतुर चक मानहि पुर तीन लोक चौ दह के बिख जग जापहि जिह जाप आद देव अनाद मूरत थापेओ सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयंभव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जात है जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक आन उसतत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानहि जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस दिन अनास अजान बाहु शाहान शाहु

अनुभूत अंग आपा अपंग गत मित अपार गुण गन उदार मुन गन प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडंड बाढ़ जाचरी छंद त्वा प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे आकामे भुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने जाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काये अजन्मं अजाये न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रथिस अधिस अदृश अकृश भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के अशेज देश के अभेज भेस के अगंज करम के अभंज भरम के अभेज लोक के आदित सोक के अवतूत वर्ण के विभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा आवरण के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रिय है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनपाओ अनूप के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीने के एक अधीने के रोजी रजा कह रही मे रेहा कह के पाक बैब है के गैबुल गैब है के अपूल गुना है के साहान साह है के कारण पुनद है के रुजी देहांद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिमे के परमं फहिमे के आकल अलामे के साहिब कलाम है के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमेशुल सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमल सिकस्त है ग्रीबुल परसत है बिलंदुल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तुमाम है रजुअल निधान है हरीफल अजीम है रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओवं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभृगं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभंग सर्व पहागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अछेज है अछूत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वीयुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है बेपुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है बेपुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुवाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है नचिंत है सुनिंत है अलेख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शांत त्वा प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल शांत त्वा प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न तात है न मात है न जात है न पात है
निरसाकं सरीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदैवं प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगवती शांत त्वा प्रसाद के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशो सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चराग हैं, के कामल करीम हैं, के राज करीम हैं, के रोजी देहंद हैं, के राज करहंद हैं, करीमल कमाल हैं, के हुसनल जमाल हैं, गनीमल खिराज हैं, ग्रीबुल निवाज हैं, हरी फुल शिकान हैं, हे रासुल फिकान हैं, कलंकन प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजाइक रहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब के राह हैं, के नरकुं प्रणास हैं, बहस्तुल निवास हैं, के सरबुल गुवन हैं, हमेशुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परंग परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेशुल अलेख हैं, हमेशुल अपीक हैं, जमीनल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, क्रीमुल कमाल हैं, के जोरत जमाल हैं, के अचलम प्रकाश हैं, के अमितो सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो विभूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलम अनंग है, के अमितो अपंग है, मधुभार छंद त्व प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुण गन मुदाम, अर बर अगंजो, हर नर प्रपंजो, अनगन प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अनुभव अनास, मुन मन प्रकाश, गुण गन प्रणाम, जल थल मुदाम, अंश जो अंग, आसन अपहंग, उपमा अपार, गत मित उदार, जल थल अमंड, दिस्विस अपंड, जल थल महंत, दिस्विस बेअंत, अनुभव अनास, त्रित तर तुरास, आजान बाहो एक सदाहो, ओंकार आद कथनी अनाद, खलखंड ख्याल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चित चरण नाम, अनशेज गात, आजिज न बात, अनचांज गात, अनरंज बात, अन टट पंडार, अन ठट अपार, आडीठ धर्म, अतटीठ कर्म, अन ब्रण अनंत दाता महंत, हर बोल मना शांत त्वा प्रसाद, करुणालय है, अरकालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपाश है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम्बर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खालखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणी त्रित है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजबाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, खालकायक है, विश्वम्बर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वपायक है, भाव भंजन है, अरे गंजन है, रेप तापन है, जाप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग काम संग सांत रूपे, नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो ज्योद ज्योदे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादं बेभूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अभंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अश्री शांत, अजय अलय अपहय अभय अभू अजू अनास आकाश, अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख, अनाम अकाम अघा अठा, अनाते प्रमाते अजूनी अमूनी, ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे, अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे, भुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे, समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे, समस्तुल निवासे, निरकामंग विभूते, समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी, सुकर्मंग विभूते, सदा सच्चिदानंद, सतरंग प्रणासी, क्रीमल कुनिंदा, समस्तुल निवासी, अजायब बेभूते, गजायब गनीमे, हरियं करियं करीमुल रहीमे, चत्र चक्रवर्ती, चत्र चक्र पुगते, सुयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते,
दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें तो प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरारदन सुध सुधातिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाऊन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप पहली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पहे तो कहा पहे भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिशान को बांजित ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गनै नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सो संयम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सब सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाहा दुरंत दुबाहा सुसाज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चार सार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचिक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे उन प्रतापन बाट जैत तुन पापन के बहु पूंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इश नानक जादिक दान अनेक सुअम्बर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचीफत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पात के प्रस हैं पाग ते नर फिर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फ्रियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो प्रलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा में काहू पशाक शीस निवायो को भूतान को पूजत है पाश को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो।

जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती, चौपाई हमरी करो हाथ द रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सब है तुम कावो। आप हाथ दय मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सब है करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करिए। सब बैरन को आज संग्रिया, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याओ। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरे है। मरण काल का त्रास निवरी है, हुजो सदा हमारे पच्छा। श्री अस्तु जो कर हो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे। साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंध दुष्टन के हंता। तुम हो पूरी चतुर्दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा। काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सेवकियो। वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सुवारा। नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो। देव दायत जशन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी। सकल प्रजा जिन आप सुवारी, सेवकन को सैव गुण सुख दियो। सत्रन को पालमो बाद कियो, घट घट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत, चिटी ते कुंचर अस थूला। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने। घट घट के पट पट की जाने, जब उद करख करा कर तारा। प्रजा तरत तब देह अपारा, जब अकरख करत हो कब हूँ। तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तार है। आप अपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम। जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्बकार निर्लंब। आद अनिल अनाद असंभव, ताका मूड उचारत भेदा। जाको भेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत। महामूड काश भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव। निरंकार का चीनत नह भेव, आप अपनी बुद्ध है जेती। बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा। किह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा। रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जे रज से तज कीने। ओत पूज खान बहुर राज दीने, कहूं फूल राजा हुए बैठा। कहूं सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव। आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो। सिख उबारो असिख संगरो, दुष्ट जीते उठवत उत्पाता। सकल मलेश करो रण कहता, जे अस तुझ तव सरनी परे। तिनके दुष्ट दुखत हवा मरे, पुरख जवन पाग परे तिहारे। तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार ते आय है। ताके काल निकट नह आय है, रक्षा होए ताहे सब काला। दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो। ताके ताप तनक मोह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई। दुष्ट शाह श्वाय सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा। काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा। दारिद दुष्ट दुख ते रहा, खड़क के तुम्हें शरण तिहारी। आप हाथ दय लिहो उबारी, सर्ब ठाउर मोहो सहाई। दुष्ट दुख ते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जगमाता। ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, केल बेखो सकल देह को हरता।
दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस तुज जब भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बाशत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नरकी रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह, सहस पणिजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा। सुइया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मानेओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहे हम एक न जानेओ। श्री अस पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहेओ सब तोहे बखानेओ। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहे तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहे तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एको ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु तप पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां। शब्दोता गावो हरि केरा, मन जनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारणा, अंगीकार ओ करे तेरा। कार्य सब सुवारणा, सब ना गला समरथ स्वामी। सो क्यों मन हो विसारे, कह नानक मन मेरे। सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा। घर ता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, कर सात सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुरबान कीता गुरु विटहो। जिस दियां ए वडियाइया, कह नानक सुनो संतो। शब्द धरो प्यारू, साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे। कला जित घर तहरिया, पंच दूत तुद वासो कीते। काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया, तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे। कह नानक तय सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। साची लिवै बेन देह ने माणी, देह ने माणी लिवै बाजो। क्या करे बेचारिया, तुद बाज समरथ कोए नाही। कृपा कर बनवारिया, एस नाओ होर थाओ नाही। शब्द लाग सुवारिया, कह नानक लिवै बाजो। क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सब को कह। आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते। कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चै सवारिया। कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू दे सोई जन पावै, पावै तां सो जन दे जिसनु। होर क्या करै बेचारिया, एक भरम भूले फिरै दह देसो। एक नाम लाग सवारिया, गुरप्रसादी मन भया निर्मल। जिना भाणा पावे, कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे। आव हो संत प्यारे हो, अकथ की करै कहानी। करै कहानी अकथ केरी, कित द्वारै पाईऐ। तन मन धन सब सौंप गुर कौ, हुक्म मन्ने पाईऐ। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संतो, कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने। तू सुन मन मेरिया,
ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਮੋਹਣੀ ਤਿਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੁ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣਹੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੂ ਆਖ ਵਖਾਣ ਆਏ, ਅੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗ ਤੂੰ ਉਪਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਆਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੇ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਇਕ ਵੇਖ ਪਰ ਸੁਣ ਆਇਆ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਹਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ, ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਹੇ ਤਿਵ ਚੱਲੈ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵੈ ਚੱਲੈ ਜਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਹੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਹੇ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ, ਇਹੋ ਸੋਹੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਭਾਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਵਿਣ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸਹਿਸੇ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਤੂ ਵਉ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਵਜਾਏ, ਜੀ ਉਹ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿਨ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ।

ऐसी बाहर माया, माया अगन सब एको जे ही करता है खेल रचाया। जात इस भाणा ता जमया, परवार भला पाया, लिव छुड़ की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया। हर आप अमुलक है, मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए, किसे बिटहो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जी मिले, तिसनु सिर सौंपी है, विचों आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहे, हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है, भाग तिना के नानका, जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मन वण जारा, हर रास मेरी मन वण जारा, सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपयो जियो, लाहा खटे हो देहाड़ी। इहो धन तिना मिलिया, जिन हर आपे पहना। कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ वण जारा। ए रसना तू आन रास, राच रही तेरी प्यास ना जाए। प्यास ना जाए होरत कितै जिचर, हर रस पल्ले ना पाए। हर रस पाए पल्ले पिए, हर रस बहुड़ ना कृष्णा लागे आए। इहो हर रस करमी पाईऐ, सतगुरु मिले जिस आए। कहे नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया, हर तुम मैं जोत रखी, तातू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच, तातू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होआ, चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया, जो तरा की तातू जग मह आया। मन चाओ पहया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्या पए। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जा पए। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रभ आप मिलया, करण कारण जुगो। ए शरीरा मेरिया, इस जग मैं आए, कह क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मैं ज्योत तहरी। हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरे हर ने हालिया। इहो विस संसार तुम देख दे, इहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा, हर एक है, हर बिन अवर न कोई। कहे नानक ए नेत्र आंद से, सतगुर मिले दिव दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो, सचै सुनने नू पठाए, सचै सुनने नू पठाए। शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस सुमाणी। सच अलख वेडाणी, ताकि गत कही न जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वाहो, सचै सुनने नू पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी, इक ना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाऊ नावने दो, तिसदा अंत ना जाई पाया। कहे नानक हर प्यार है, जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया। इहो साचा सोहेला, साचै कर गावहो, गावो ता सोहेला कर साचै। जिथै सदा सच ते आवहे, सचो ते आवै, जा तुद पावै, गुरमुख जिना बुझावहे। इहो सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावहे।
कहे नानक सच सोहेला।

और निरंकार सच नाम जाका किया सकल जहान। सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जना मंचाओ, सिखी सिख्या गुरु विचार, नदरी कर्म लंघाए पार। कोलू चरखा चक्की चक।

बंधन बंधन पुवाए सोए पय कृत नचे सब को नच नच हसे चले से रोए उड़न जाई सदन होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन म

हमें आजात है, हमें कर्म कमाए, हमें ही बंदना सिर्फ जो निपाए। हमें कथों उपजाए कि संजम में जाए, हमें हुक्म है पै कर फिराए। हमें दीर्घ रोग है दारू की समाए, कृपा कर जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए। नानक है सुनो जनो, इत संजम दुख जाए पौड़ी सेवक दी संतो गई।

रंग हंसे रंग रोवे चुप पी कर जाए, परवा नहीं किसे केरी बाज सच्ची नाय, तेरे बाटे ऊपर खर्च मंगा

सुनहार सात्रियागार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मुक्त भए हरदास तुम्हारे आप गवाए तेरे रंग राते अनदिन नाम त्याएंदा ईश्वर ब्रह्मा देवी देवा इंद्र तपे मुन तेरी सेवा जति सती।

तुझते उपजह तुझ माहि सुमावै। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नर

ना तद ज्ञान ध्यान कुल उपत ना को गणत गणाएदा वर्ण भेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव न देहुरा गौ गायत्री कोम जग नहीं तीर्थ नावण

रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाए दा पाऊ ना भगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती।

पाठ पुराण उदय नहीं आस्तु, कहता बक्ता आप अगोचर, आपे अलख लखाईंदा। ना जात इस भाणा ता जगत उपाया, बाज कला आडान रहाया, ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए, माया मोह वधाईंदा। विरले कौ गुर शब्द सुनाया, कर कर देखे हुक्म सबाया, खंड ब्रह्मांड पाताल अरंभे, गुप्त हो पर

ते विषमादी विषम भय गुण गाएंदा मारू महला पहला आपे आप उपाय निराला साचा थान कियो दयाला पौन पानी अग्नि का बंधन काया कूट रचाएंदा नौ घर थापे थाप निहार दसवें वासा अलख अपार सायर सप्त भरे जल निर्मल गुरमुख मैल न लाएंदा राव सस दीपक जोत सुबाई आपे कर विखै वडियाई जोत स्वरूप सदा सुखदाता सच्चे शोभा पाएंदा गढ़ में हाट पटन वापारा पूरे तोल तोलै वणजारा आपे

भंडारै, सर्व कला ले आपे रहया, गुरमुख किसै बुझाईंदा, नदर करे गुर पूरा गुर फिटै, जम जंदार न मारै फिटै, ज्यों जल अंदर कमल बिगासी, आपे बिगस त्याईंदा, आपे वरखै अमृत धारा, रतन जवेहर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाइए, प्रेम पदार्थ पाएंदा, प्रेम पदार्थ लह अमूलो,

उत्पुज चलत किया सिर करते, विस्माद शब्द दिखाईंदा, सुन्नो रात दिन सुदोय किए, ओपत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता, गुरमुख निज घर पाईंदा, साम वेद ऋग जुजुर अथर्वण, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण, ताकि कीमत कह न सकै को, क्यों बोले ज्यों बोलाईंदा, सुन्नो सप्त पाताल उपाय, सुन्नो सप्त पाताल उपाय, सुन्नो भवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया अपरंपर, सब तेरो किया कमाईंदा, राज तम सत कल तेरी छाया, जन्म मरण हम मैं दुख पाया, जिसनु कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथे मुक्त कराईंदा, सुन्नो उपजे दस अवतारा, सृष्ट उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजे, सब लिखिया कर्म कमाईंदा, गुरमुख समझै रोग न होई, एह गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुग है जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त भया पत पाईंदा, पंच तत् सुन्नो परगासा, देह संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा भला दोए मस्तक लिखे, पाप पुन भी जाएंदा, ऊतम सतगुर पुरख निराले, शब्द रते हर रस मत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए, पूरे

आसा मनसा हम मैं सहसा नर लोभी कूड़ कमाएंदा। सतगुर ते पाए विचारा सुन समाध सच्चे घर बारा। नानक निर्मल नाद शब्द धुन सच रामै नाम समाएंदा। मारू महला पहला जह देखा तह दीन दयाला। आए न जाई प्रभ कृपाला जिया अंदर जुगत समाई। रहो निरालम राया जग तिसकी छाया जिस बाप न माया। ना तिस भैन ना भराऊ कमाया ना तिस ओपत खपत कुल जाती। ओ अजरावर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिरकाला। तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अत शीतल। सहज पाए लिवलाया त्रैवर ताए चौथे घर वासा। काल विकाल किए इक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन। गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारे। हर रस माते पार उतारे नानक रेन संत जन संगत। हर गुर पर साधी पाया

गुर ज्ञान रतन दीपाया, पंच तत् मिल इहु तन किया, आत्म राम पाए सुख थिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना किस भूख प्यास मन मानिया, सर्व निरंजन घट घट जानिया, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुपाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, शब्द रसाल रसन रस रसना, बेन रसाल वजाया, बेन रसाल वजाए सो, बेन रसाल वजावे सोई, जाकी त्रिभवन सोजी हुई, नानक बूझो ए बित गुरमत, हर राम नाम लिव लाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचार है रह निरारे, आप तरह संगत कुल तार है, तिन सफल जन्म जग आया, घर दर मंदर जाने सोई, जिस पूरे गुरते सोझी होई, काया गढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतुर दस हाट दीवे तुय साखी, सेवक पंच नाही बिख चाखी, अंतर वस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिले हर धन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच सुमाए गुरमत पायक, आद जुगादी है पी होसी, सहसा भरम चुकाया, तख्त सलाम हुवे दिन राती, एहो साच वडाई गुरमत लिव जाती, नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सखाई पाया, मारू महला पहला।

मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन भव जल जाए न तरिया, एहो समुंद अथाहो महा बिक भरिया, रह अतीत गुरमत ले ऊपर, हर निर्भव कै कर पाया, झूठी जग हित की चतुराई, बिलम न लागे आवै जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजय बिन सुख पाया, उपजय बिन सह बंधन बंधे, हौ मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई है, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है, गुरमत ले हो तरहु भव दुत्तर, मुक्त भये सुख पाया, गुरमत कृष्ण गुदव गोवर्धन तारे, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत लेहु परम पद पाई है, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत लेहु तरहु सच तारी, आत्म चीन हो हृदय मुरारी, जम के फाहे काटे हर जप, अकुल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अग्न निवार समाई, मन मुख नाम जपहु जग जीवन, रिद अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूजै शब्द पतीजै, उस्तत निंदा किसकी कीजै, चीनहु आप जपहु जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मांड खंड सो जानहु, गुरमुख बूजो शब्द पछाणहु, घट घट भोगे भोगन हारा, रह अतीत सबाया, गुरमत बोलहो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू महला पहला, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लभ लोभ तज हो नचिंदा, भ्रम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया, निस दामन ज्यों चमक चिंदायन देखै, एनिस ज्योत निरंतर पिखै, आनंद रूप अनूप स्वरूपा, गुरपूरै देखाया, सतगुर मिलहु आपे प्रभ तारे, सत घर सूर दीपक गैनारे, देख अदिष्ट रहो लिवलाई, सब त्रिभवन ब्रह्म सुबाया, अमृत रस पाए तृष्णा पहु जाए, अनुभव पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अत रस मीठा नाम प्यारा, नानक कौ जुग जुग हर जस दीजै, हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मन ते धीरा, दुखट घट पौ भंजन पाई, बहुड़ जन्म न जाया, भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा, हर भावै गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सबाया, जिन जप जप्यो सतगुर मत वाके, जम कंकर माल जम कंकर काल, सेवक पगता के, उत्तम संगत गतमित उत्तम, जग पौजल पार तराया, एहो पौजल जगत शब्द गुर तरियै, अंतर की दुबिधा अंतर जरियै, पंच बाण ले जम कौ मारै, गगनंतर तनक चढ़ाया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई, शब्द सुरत बिन आई जाइय, नानक गुरमुख मुक्त परायन, हर पूरै भाग मिलाया, निरपौ सतगुर है रखवाला, भगत प्राप्त गुर गोपाला, धुन आनंद अनाहद वाजै, गुर शब्द निरंजन पाया, निरपौ सो सिर नाही लेखा, आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजूनी संभव, नानक गुरमत सो पाया, अंतर की गत सतगुर जान।

निर्भाव गुर शब्द पछाणे, अंतर देख निरंतर बूझे, अंत न मन डोलाया। निर्भाव सो अब अंतर वसिया, अहनिस नाम निरंजन रसिया। नानक हर जस संगत पाईऐ, हर सहजे सहज मिलाया। अंतर बाहर सो प्रभ जाने, रह अलिपत चलते घर आने। ऊपर आद सर्व त्यो लोई, सच नानक अमृत रस पाया। मारू महला पहला, कुदरत करने हार अपारा। कीते का नाही क्यों चारा, जी उपाय रिजिक दे आपे। सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाई रहया पर पूरे। किस नेड़े किस आखां दूरे, गुप्त प्रगट हर घट घट देखो। वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए। गुर शब्दि हर नाम त्याए, आनद रूप अनूप अगोचर। गुर मिलया परम जाया, मन तन धन ते नाम प्यारा। अंत सुखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली। बिन हार गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा। शब्द मिलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरे वहो। जिन भूला मार्ग पाया, संत जना हर धन जस प्यारा। गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै। हर दरगह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाए। साची दरगह गत पत पाए, साकत ठौर नाही हर मंदर। जन्म मरे दुख पाया, सेवो सतगुर समुंद अथाहा। पावो नाम रतन धन लाहा, बिख्या मल जाए अमृत सरनावो। गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवो

शब्द सतगुरु सेवै, जरा जम तिस जोहे न साकै, साचे स्यों बने आई हे। तृष्णा अग्न जलै संसारा, जल जल खपै बहुत विकारा, मन ठौर न पाए कब हूं, सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन सेवड भागी, साचै नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रविया नहि केवल, तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरलै किनै पछाणी, सच्चै शब्द रत्ते बैरागी, आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसै मन आए, सतगुरे अपना सद ही सेवह, हम मैं विचहुं जाई हे। गुरते बुझ है तां दर सूझ है, नाम विहूना कथ कथ लुझ है, सतगुर सेवे सतगुर सेवे की वडियाई, तृष्णा भूख गवाई हे। आपे आप मिले तां बुझ है, ज्ञान विहूना किछु न सूझै, गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई हे। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोए न मिटै तुर पर माया, सत्संगत मैं तिन ही वासा, जिनको तुर लिख पाई हे। अपनी नदर करे सो पाए, सच्चै शब्द ताड़ी चित लाए, नानक दास कह बेनंती, भिखिया नाम दर पाई हे। अपने

0: जो मेरे नाल अड़ बीती है। बचन ध्यान ना सुने, ये हड बीती दस रही। गुरुद्वारा ग्रैंड रॉक न्यू जर्सी, काफी पुरानी का ये बचन है, काफी साल हो गए। चांजी चांजी उच्च गुरु की सेवा एड ग्रंथी साहब, आप जिन्हें हुणे चढ़ाई की थी है, उन्हां दे परिवार माता जी थोड़ा चिर पहले दास उत्थे कीर्तन ते भी गया सी, बहुत प्यार करते सी। गुरसिख ते बड़े देखे पर उन्हां वर्गा गुरसिख ही कोई। किते दूर दुराडे उन्हां जाना सी, असी उस वक्त थोड़े दिनों वास्ते सेवा च आए। तो बड़े प्यार से आखन लगे भी असा दो दिन लग जाने ने, तो तुसी अमृत वेले की सेवा करो। झटपट मेरे रसना तो एक गल मैं कह सतबचन जी धन भाग महाराज जी दे प्रकाश की सेवा साढ़े कि तीन पौने चार बजे कहते ने होंगी है, मैं कोई गल नहीं जी, असी त्रै जने आए वा करांगे सेवा। सर्दी के दिन आही दिन से बर्फां का ढेर लगे, उस पास बर्फ पैंदी भी बड़ी, इन्हों दिन अच बहुत बेअंत है। असी अमृत वेले उठे, स्नान पानी किया, महाराज जी के सुखासन साहब जी के कमरे तक पहुंचे। शीशा लगा सी ते मेरी निगाह हॉल च पाई, ते मन में आ रहा भी ये संगत कितों आई है। साढ़े तीन का समा ते सारा हाल खालसाही जहो जलाल विच सजिया बैठा। बोलो सिरे, मैं वेख रहा बड़ा हैरान होया कि इस वेले ये संगत कितों आई है। महाराज जी का सच्चे पातशाह की पावन पुत्र बीर सिते लई भाई जसवीर सिंह चौर साहब करन वाले इसे तरह ही महाराज सच्चे पातशाह जी लैके आ रहे हैं। ते जकारे बजने शुरू हो गए, और इनी आवाज पहले तो अंदरों बड़ा डर जा लगा, घबरा भी गया, पर एकदम सच्चे पातशाह ने जहन के आख्या कि कलगी वाले तेरी खेड है कोई। कि तू आप ही विचरता पिया है, एवं लग रहा प्रकाश किया महाराज जी का। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜੀ ਹੋ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭਲਾਏ। ਬੜੀ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਈ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾਈ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
1: ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ।
0: ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ।

एक बेनती कर दें आप जी के चरण च। कलगी वाले धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिथे देख देखते धनी हैं, सरबंस दानी हैं, खालसा पंथ के सृजनहार हैं, उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बहुत वड्डे संगीतकार भी हैं। सत संगत बोलो श्री दास ने आरंभता की धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बचना बिन करतार न किरतम मानो राग कल्याण पातशाही दसवीं जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग सिकल हन 31 राग ही मिश्रित हन 62 राग एडा वड्डा खजाना उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 177 राग गाए ने 177 सात संगत बोलो श्री इदी परचोल 1990 दे विच शुरू होई सी और इन्हों 2 साल लगे सी लुधियाने विच दास उदे विच शामिल सी। ये बहुत वड्डी देन है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, बहुत वड्डी देन है सात संगत। जे असी उस देन नु संभाल सकीए शायद साडे पुरब मनाए सफल हो जान, इत्थे आउणा सफल हो जाए। जिस मार्ग ते जिस रस्ते ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू तोरना चाहिया उस रस्ते ते किते असी भी तुर पईए ते शायद इस जीवन विच इस लाइफ विच ऐसी क्रांति आ जाए। क्रांति ए वही क्रांति ते सी सतगुरु बेहर करन बख्शिश करन। सरबत दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद।